अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति राम चंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग, जो आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, TTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है हम उपलब्ध हैं। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि यात्रा जो है एक बहुत ही मुख्य अध्याय जो है तक पहुंच चुकी है, यानी हम ये कहें कि ये यात्रा जो है अब अपने आखिरी चरणों में आ चुकी है।
1: जी हाँ सर, का अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई 2026 को शुरू हुई थी, अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। इस पवित्र यात्रा ने हजारों लाखों भक्तों को श्री अमरनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य दिया। अब जैसे कि आपने कहा, अभी जो है छड़ी मुबारक का जो है मुख्य यात्रा चल रही है, तो छड़ी मुबारक जो कि यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है, अब ये यात्रा जो है 22 अगस्त यहाँ से दाशनामी अखाड़े से निकल गई है अपने मुख्य यात्रा पे, यानी कि पहलगाम की ओर। तो इस छड़ी मुबारक को विभिन्न स्थानों पे ले जाया जा रहा है, जहाँ इसके सम्मान में विशेष पूजा और अर्चना की जा रही है। ये अति प्राचीन कालीन परंपरा है जो अमरनाथ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा रही है। इन पूजा अर्चनों के बाद छड़ी मुबारक को अंतिम लक्ष्य पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर ले जाया जाएगा। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण है,
0: धार्मिक
1: दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि कश्मीर की समृद्धि विरासत का भी प्रतिरूप करती है। हम इस यात्रा से जुड़े पूरे समूह से अनुरोध करते हैं कि वो इस यात्रा, जो पवित्र यात्रा अभी छड़ी यात्रा चल रही है, कि अंतिम चरण में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति जो है बनाए रखें। साथ ही हम ये भी निवेदन करते हैं सभी से कि वो स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि ये यात्रा जो है सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके।
0: जी बिल्कुल।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू हो गई 22 अगस्त को। दाशनामी अखाड़े से जो मुख्य यात्रा होती है पहलगाम की ओर, तो 22 अगस्त को ये शुरू हुई। तो अमरनाथ यात्रा के इस आखिरी और अत्य पवित्र चरण में भगवान शिव का पवित्र छड़ी मुबारक अब अपनी पारंपरिक यात्रा पर आगे बढ़ रही है। 22 अगस्त, जैसे कि हमने अभी कहा, श्रीनगर के दाशनामी अखाड़े से महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगवाही में छड़ी मुबारक ने पवित्र गुफा की ओर अपनी मुख्य यात्रा शुरू की थी और 22 अगस्त को ही ये छड़ी मुबारक जो है पहलगाम पहुंच चुकी थी।
1: जी बिल्कुल, और यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत ही वैदिक मंत्रों, पूजा अर्चनाओं और भक्ति भाव के साथ जो है साधुओं और श्रद्धालुओं के साथ जो है छड़ी मुबारक का ये सफ़र अब जो है अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
0: जी, 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम में ही रही। इसके बाद 24 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक की यात्रा ने पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर प्रस्थान किया। 25 अगस्त इसका अगला पड़ाव रहा शेषनाग। इसके बाद कल 26 अगस्त और आज जो है 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में ही विश्राम के लिए रुकेगी और फिर आएगा वो अति पवित्र दिन 28 अगस्त यानी कल, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का दिन।
1: और श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि इसी पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक सुबह पवित्र अमरनाथ जी गुफा की ओर प्रस्थान करेगी और वहाँ पारंपरिक पूजा, वैदिक मंत्रों और विशेष

0: अनुष्ठानों के साथ जो है भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन और पूजा जो है समापन होंगे, और यानी अगले कुछ दिन जो है अमरनाथ जी यात्रा के परंपरा आस्था और आध्यात्मिकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से शेषनाग और शेषनाग से पंचतरणी और पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर।
1: जी सायका, यहाँ पे ये भी हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, ये वही पारंपरिक मार्ग है जहाँ से छरी मुबारक अपनी वार्षिक यात्रा को पूर्ण करते हुए भगवान श्री अमरनाथ जी के पवित्र धाम तक पहुँचती है। श्रोताओं, छरी मुबारक के इस सफर की एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कश्मीर की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत प्रतीक है।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

वयं भगं मित्रं अदितिं दक्षमस्त्रिधं अर्यमणं वरुणं सोमं।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और हम जो है गुफा के महत्व के बारे में आपको बता दें कि सदियों से लाखों महान आम लोग, बुजुर्ग और जवान बच्चे इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन और थका देने वाली यात्रा करते रहते हैं। इनमें सबसे मुख्य की बात करें तो वो हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1898 में इस पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। स्वामी रामतीर्थ और सबसे बढ़कर महान संत स्वामी शंकराचार्य, जिन्होंने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए दक्षिण से यात्रा की थी। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी की इस पवित्र गुफा की यात्रा के बारे में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, ने अपनी किताब नोट्स ऑन द वॉन्डरिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में दिलचस्प बातें बताई हैं। वे कहती हैं कि गुफा के अंदर स्वामी जी इतने भावुक हो गए थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वे गहरी भावना के कारण बेहोश हो गए। सिस्टर निवेदिता ये भी जो है लिखती हैं कि वो जगह जो है बहुत विशाल थी, इतनी बड़ी कि उसमें एक कैथेड्रल यानी कि एक बड़ा सा चर्च समा सकता था, और बर्फ से बने विशाल शिवजी घने अंधेरे वाले एक कोने में ऐसे पवित्र ढंग से विराजमान थे मानो अपने आसन पर बैठे हों। वे बताती हैं कि स्वामी जी ने उन्हें बताया था कि गुफा में उन्हें एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। भगवान शिव जी स्वयं ही उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि जब भी वे चाहें तब उनकी मृत्यु जो है वो हो सकेगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, कुछ क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार समाप्त करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली

0: की परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 008618584905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात

0: में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, 2 नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2 हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है।

0: सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचाहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
3: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Besides Indians missing,

0: as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। अब खबरें तफसील से। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुक्काम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से यगांगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बाहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इधर पेशिंग में भी भारत के सिफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बर्तानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकामात से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से 8 पनबिजली प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके

0: अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
1: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ NDRF सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिना इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माय भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर जिले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके जरिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक जिम्मेदारी, रजाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के जरिए नौजवान अफराद को खेलों से मुतालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नज़रियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निज़ाम के बारे में जारी मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा, जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए मदऊ किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त, डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए के आयन मुताबिक हो रहा है, जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है, क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैन्स और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रुपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वो गुजरात विद्यापीठ के तकसीम असनाद की 72वीं तकरीब में शिरकत करेंगे और अहमदाबाद में आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: जनाब अमित शाह अमरेली जिले के दुधला इलाके में नौ तामीर शुदा हैथनी झील का इफ्तिताह करेंगे। इसे हरे कृष्णा फाउंडेशन ने तैयार किया है। बाद में वजीर दाखिला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें वो आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सपहर को जनाब अमित शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां तलबा से खिताब भी करेंगे। बाद में वो भोपाल के गाडोदिया हलके में लोक दरबार में शिरकत करेंगे, जहां वो मकामी लोगों से बात करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।

0: उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त की निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज़्यादा बसों में दस्तियाब होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिर से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मुअसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी ख्वातीन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़ समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीज़ा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फ़ायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीज़ा के लिए 1,03,265 डॉलर की नई दरख्वास्त फीस तजवीज़ की थी। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निमटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। ये कदम एक अहम तारीखी तस्फीय के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्ता कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बैन अलावी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के त्रिलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचियोन में आलमी ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। ये चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इनफरादी पोमसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक़िद हुई नेशनल ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबार ने नेपाल में आए भयानक सैलाब से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, नेपाल में सैलाब से तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नेपाल के वजीर आजम बालेन शाह से फोन पर बातचीत और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहमी का वादा करने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने इस यकीन दहानी को अहमियत दी है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ है। अखबार इनकलाब ने तेलंगाना में सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत को कौमी सफ़े पर जगह दी है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी

0: अमान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के व्यूज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और हम उपस्थित रहते हैं आपके लिए प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो है छरी मुबारक की मुख्य यात्रा जो है 22 अगस्त को दाशनामी अखाड़ा से पहलगाम की ओर बढ़ चुकी है।

0: और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अनंतनाग से। हमारे संवाददाता जो है एस तारिक साहब, वो हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं छड़ी मुबारक और यात्रा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है इनके पास, आइए जानने की कोशिश करेंगे। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज एक दिन शेष रह गया है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली ये पावन यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव के तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले मौसम की जानकारी के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक यात्रा रास्ते पर आज मौसम मजबूती तौर पर साफ और धूप वाला है। सुबह के अवकात में बाला इलाकों में दर्जे हरारत तकरीबन 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शुमाली मशरकी सिमत से 1 से 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चल रही है। मौसम बिल्कुल खुशगवार है और मौसमी पेशगोई के मुताबिक सुबह के वक्त बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शाम दोपहर के बाद आसमान जजवी तौर पर अब्र आलूद होने के साथ फिर अमूम बादल छाने की तवक्का है। बालाई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है, जबकि हल्की बारिश के इम्कान तकरीबन 15% बताए गए हैं, तो कि नाके बराबर है। पहलगाम में दर्ज हरारत 15 से 23 डिग्री के आसपास रहेगा। मुतल्लिका हुकाम ने यात्रियों और मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से तब्दील हो सकता है, इसलिए सफर से कबल मुकामी मौसमी और इंतजामी हिदायत जरूरी मुलाहिजा कीजिएगा। तो छड़ी मुबारक आज पवित्र यात्रा के चौथे पड़ाव पंचतरणी में बरजमा है। जत्थे के साथ साधु संतों के अलावा सिक्योरिटी अधिकार, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, होली वाले, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर अधिकारी शामिल है। आज रात जो भी है वो पंचतरणी में रात्रि होगी, तो कल जो पोफटे की सुबह किरण के साथ ही 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के पवन दिन छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ के पवन गुफा पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्र उच्चारण के साथ श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का रिवायती समापन होगा।
0: जी,
1: तो श्रोताओं को मैं बता दूं कि जो छड़ी मुबारक की है पवन जो परंपरा सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे कश्मीर में जितने भी रहने वाले मुस्लिम सिख जो भी समुदाय है उनके लिए भी अपनी एक विशेष संस्कृत और तारीखी अहमियत रखता है। मुकामी लोग सदियों से छड़ी मुबारक की रवानगी को सर्द मौसम की आमद की एक अलामत के तौर पे भी देखते आते हैं। जो छड़ी मुबारक और श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध है, यही वजह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का परंपरा का आगाज और जो समापन जो श्री मुबारक के साथ ही होता है, यानी जेठ अष्टमी पूर्णिमा से श्रवण पूर्णिमा तक का जो उत्साह है मजहबी एतबार से इंतहाई अहम समझा जाता है, जो तकरीबन 1 महीने का रहता है। तो ये मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता दूंगी, जो हमारी जो यात्रा क्योंकि आखिरी पड़ाव पे है, आखिरी आज का दिन और कल का दिन, कल तो समापन होगा और आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि आज आखिरी सफर होगा इसके लिए। आज की रात्रि होगी और सुबह पूजा पाठ के साथ ही इसको हम विदा करेंगे। तो प्राणों के मुताबिक एक साधु ने अपने शिशु और भक्तों को श्री अमरनाथ गुफा के जाने जाने और वहां भगवान शिव के पवन शिवलिंग के दर्शन करने की हिदायत दी है। जब इसकी शिष्य यात्रा पर रवाना हुए तो मार्ग में राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस ब्रिंगीशा नामी शख्स के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बयान की, तो ब्रिंगीशा जो बड़ा साधु था ने भगवान शिव की प्रार्थना की। माना जाता है कि भगवान शिव ने इन्हें एक पवन तुब्र अता किया जिसे बाद में छड़ी मुबारक का नाम दिया गया है। ये जो शिव शक्ति के प्रति के छड़ी तो मुबारक का भगवान शिव और शक्ति की जिसको पावन निशानी भी मानी जाती है, तब से ही भगवतों का एक बड़ा जत्था इसी पवन छड़ी के साथ श्री अमरनाथ गुफा के जानी यात्रा करता आया है, जो आखिरी टाइम पे किया जाता है, जो आज एक हफ्ते से जारी है। और यही छड़ी मुबारक इस वक्त बिल्कुल चंद्रवाली पंचतरणी में बरजुमा है। अभी वो मैं अभी वीडियो उनका देख रहा था तो बिल्कुल मौसम खुशगवार मौसम में वहां तकरीबन जो 100 अधिकारियों पे जो सरकारी अधिकारी है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के।

0: होने वाले जितने भी खिदमत गुजार वहां थे वो तकरीबन 100 के लोग उनके साथ हैं और वो प्रार्थना कर रहे थे, इस वक्त भी भजन कर रहे थे। तो आज दिन भर वो की रुकेंगे, तो सुबह मॉर्निंग को जो टू फटे की पहली किरण होगी उसी के साथ वो वहां से रुखसत होंगी। 2 किलोमीटर के सफर के बाद वो संगम के बाद और आगे 2 किलोमीटर है, तो फिर वो बाजाबता जो है गुफा के द्वार पहुंच जाएंगे और वहां वही बिल्कुल वही प्रार्थना होगी, उसी तरह की प्रार्थना होगी जो लॉर्ड शिव से उन्हें मिली है। तो
1: जी
0: उसी के साथ फिर ये इस स्थान को पहुंचेंगे। तो
1: जी हाँ
0: हम
1: तो
0: भी प्रार्थना करें कि उनकी जो ये सफर जो है, ये जो ये मुकद्दस सफर है, उनको ये बिल्कुल कबूल हो, उनकी जो इच्छा है और फिलहाल इस कामना के साथ कि बाबा बर्फानी की जो सभी श्रद्धालु है बस गेम में श्रद्धालु के साथ जिन्होंने आज तक नहीं बनते जो इतने सारे लाखों लोगों ने वहां दर्शन
1: दर्शन
0: किए हैं
1: प्राप्त
0: वो
1: किए जी
0: मनोकामना के साथ उनकी मनोकामना पूरी हो, उनकी यात्रा में
1: जी हमारी भी यही प्रार्थना है, जितने भी श्रद्धालु बाबा के द्वार पे आए, दर्शन प्राप्त किया, तो सब की मनोकामनाएं पूरी हो जाए और वो सफलतापूर्वक घर भी पहुंचे, और जो हमारी अभी ये छड़ी यात्रा चल रही है ये भी संपूर्ण तरीके से समापन तक पहुंचे। और इसी के साथ जो है कल जो है लास्ट डे है, अंतिम दिन है इस वर्ष की यात्रा का, और छड़ी मुबारक के साथ ही जो ये कल की पूजा अर्चना होगी तो उसी के साथ ही इस वर्ष की यात्रा जो है उसका समापन होगा। तो इसके बारे में जो भी आपने अपडेट दिया आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी, अमरनाथ यात्रा सिर्फ सफर नहीं होता, ये एक एहसास होता है, ये भारत का असली रूप है जहाँ श्रद्धा का रंग सबसे गहरा होता है। यही है अमरनाथ यात्रा। ये सफर सिर्फ मैप पे नहीं होता, ये होता है दिल के रास्ते, विश्वास के सहारे और बाबा के आशीर्वाद की रोशनी में।

0: मुल्क में मौसमी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल पर लगातार नज़र रखे हुई है। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए हेल्थ रिसर्च महकमे के सेक्रेटरी और ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजू बहल ने कहा कि अभी तक इन्फ्लुएंजा की किसी नए वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई है। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.2 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस एवं न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा हिंदू समुदाय के लिए बहुत खुशी और उत्सव का समय होता है। तीर्थ यात्री आशा और नवीन किरण भावना के साथ स्वामी अमरनाथ जी की गुफा में हाजिर होते हैं और वो शांति और संतुष्टि के भावना के साथ प्रसन्न होकर अपने घरों की ओर लौटते हैं। ये ऐसी यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कठिन है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी है। भक्तों को अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजर कर पहाड़ों के माध्यम से पद यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि यात्रा आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण और चिंतन का एक अवसर भी है। यात्री पवित्र गुफा में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के साथ साथ वो हिमालय की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव भी करते हैं। श्रोताओं, जो बाबा बर्फानी का दर्शन प्राप्त करने के बाद, पवित्रता हासिल करने के बाद सफल होते हैं, हमारी मनोकामनाएं हैं आपके साथ कि आप पवित्र गुफा में हाजिरी देकर इस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में सफल हुए हों।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। हम आपकी सेवा में प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। जी हाँ श्रोताओं, दाशनामी अखाड़ा से शुरू हुआ ये पवित्र सफ़र अब पहलगाम की वादियों से गुजरता हुआ उन हिमालयी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, जहां 28 अगस्त को पवित्र गुफा में विशेष पूजा के साथ इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक समापन होगा। प्रशासन की तरफ से भी छरी मुबारक के सुगम और सुरक्षित सफर के लिए पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक आवश्यक इंतजाम

0: आराम की समीक्षा की गई है। भोजन, पीने का पानी, आवास, सैनिटेशन, पूजा सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। जी सायका,
1: जी श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि ये आपकी जो ये छड़ी मुबारक वाली यात्रा है, ये मंगलमय रहे, सुरक्षित रहे और सुखद रहे। और इस सफ़र के दौरान आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का जो है सम्मान करें। और ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यात्रा के दौरान स्वच्छता जो है बनाए रखें और प्रकृति का संरक्षण करें। और हम ये भी आपको ये यहाँ पर बता दें कि किसी भी आपातकाल या सुविधा की स्थिति में तुरंत जो है संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। DTH की आराधना सर्विस,

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष की यात्रा भी विशेष रूप से उल्लेखना है, क्योंकि भगत प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते नहीं थके। हिमालय की कठिनाइयों के बावजूद सरकार ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण इकदाम किए। जी हाँ, विभिन्न स्थानों पर लगाए गए CCTV कैमराज और प्रकाश व्यवस्था ने यात्रा को और भी सुखद बना दिया है। हर मोड़ पर प्रशासन की सोच और समर्पण का आभास होता है। विशेष रूप से बनाए गए नए लंगर और विश्राम स्थलों ने जहाँ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई, यात्रा को और भी आरामदायक बना दिया। व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए भगत, आपको पता ही होगा, भगत जो है तीर्थ यात्री जो है बहुत प्रसन्न हुए थे। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि तीर्थ यात्री जो है जोश और उम्मीद के साथ बाबा के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी आए और बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करके वापस प्रसन्नता के साथ अपने क्षेत्रों की ओर लौट गए।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, हर साल भारत के हर कोने से लाखों भगत जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की ऊंचाइयों में स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए निकलते हैं। ये गुफा जहां बर्फानी बाबा शिवलिंग का प्रतीक रूप में निर्माण होता है, हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। यात्रा का प्रारंभ जम्मू या बालतल और पहलगाम रूट से होता है। रास्ते कठिन जरूर हैं, लेकिन भक्तों के हौसले उनसे भी ज्यादा मजबूत। हर मोड़ पर भंडारे, लंगर और सेवक भक्तों की सेवा में लगे होते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक समर्पण की यात्रा होती है, जहां आदमी अपने अहंकार और थकान सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य पर चलता है कि बस बाबा बर्फानी के दर्शन हो। जी साईका
1: जी, बिल्कुल। श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि सरकार और लोकल प्रशासन द्वारा यात्रा के दौरान सुरक्षा का और स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं का भी जो है विशेष ध्यान रखा जाता है, और इस साल भी यात्रियों के लिए RFID ट्रैकिंग हेल्पलाइन सर्विसेज और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध जो है कराई गई हैं। ये यात्रा जो है ना हमें केवल धर्म से जोड़ती है बल्कि एकता और सहयोग का पाठ भी पढ़ाती है। और अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसी यात्रा भी है जो शरीर को तो अवश्य थका देती है लेकिन आत्मा को जागृत करती है।

हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां दे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए।

0: के लिए अद्भुत धार्मिक महत्व रखती है। इस साल की यात्रा जो 58 दिनों तक चलेगी, यानी 3 जुलाई 2026 को शुरू होकर 28 अगस्त यानी कल समाप्त होती है। यात्रा के दो मुख्य रास्ते बालतल और पहलगाम शुरुआत से ही इस्तेमाल होते आए हैं, जिसमें बालतल जल्दी चढ़ाई का रास्ता देता है और पहलगाम जो है धीमा पर आरामदायक मार्ग प्रदान करता है, जो यात्रियों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है।
1: जी, यहाँ पर श्रोताओं को बता दें कि आज तक जो है कुल मिलाकर 4,80,000 यात्रियों ने जो है अमरनाथ जी गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं, जो बारी बागृति को दर्शाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं और जो यात्रा व्यवस्था में डिजिटल प्रबंधन को भी जो है दिखाता है। और आपको ये बता दें कि ये बागृति श्रद्धालुओं के अद्भुत विश्वास और समर्पण को भी दर्शाती है, चाहे कितनी भी चुनौतियाँ कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो।
2: मेरे लिए नहीं देखना तो भोले शंकर के लिए जरूर देखना, गाना पूरा देखना। एंड
3: पता नहीं तुझा ख्याल रखना अपना।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

एफएम पहलगाम के संग। जय श्रोता, अमरनाथ यात्रा न सिर्फ धार्मिक रूप से अहम है बल्कि ये कश्मीर की सामुदायिक एकता और कश्मीरियत की मिसाल भी है। अनंतनाग और गांधरबल के लोग और दूसरे समुदायों के लोग इस यात्रा में हिंदू यात्रियों की मदद करते हैं जो भाईचारे और अमन की मिसाल है। हर साल ये यात्रा लोगों के दिलों में एकता और विश्वास को मजबूत करती है। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश और जुनून कम नहीं होता है। यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक सफर है बल्कि एक ऐसा अवसर भी है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर करता है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार समाप्त करेंगे। जरा सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत

0: ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहु और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिवशेर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority.

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ श्रोताओ, जैसे कि छड़ी मुबारक का जो है सफ़र आगे बढ़ रहा है, जैसे हम बार बार आप तक ये अपडेट पहुंचाते हैं कि छड़ी मुबारक जो है 22 अगस्त को दाशनामी अखाड़े से पहलगाम की ओर प्रस्थान के लिए निकल गई और विभिन्न जो है पड़ाव पर उन्होंने विश्राम भी किया, तो कल की और आज की अगर बात करें 26 और 27 अगस्त की, तो पंचतरणी में छड़ी मुबारक का विश्राम होगा। तो अब इंतज़ार है 28 अगस्त का, यानी कि कल का, जब श्रावण पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में विराजमान होगी। वैदिक मंत्रों की गूंज होगी, पूजा अर्चना संपन्न होगी और बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में आस्था और आध्यात्म का एक और अध्याय पूर्ण होगा। छड़ी मुबारक की इस पवित्र यात्रा के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहलगाम से चंदनवारी, चंदनवारी से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी और फिर 28 अगस्त यानी कि कल पवित्र अमरनाथ गुफा आस्था के इस पवित्र सफर में हम सब की यही कामना है कि भगवान श्री अमरनाथ जी सब पर अपनी कृपा बनाए रहे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार समाप्त करेंगे। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक

0: मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में 1 टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: When I talk about sports, ki baat karta hun, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The Khelo India dialogue provided a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has reached 162. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal has said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. Earlier, Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and assured him of all possible humanitarian assistance.

0: The National Disaster Response Force NDRF today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. The teams are prepared to undertake evacuation, relief and rescue operations in case of flooding or waterlogging. He said the first barrage on the Gandak River along the Indian-Nepal border at Valmiki Nagar in Bihar's West Champaran district is being closely monitored. So far, there has been no impact of the flash floods in Nepal in the area. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. IMD also predicted heavy rainfall over Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Meanwhile, heavy to very heavy rainfall is expected at isolated places over Odisha on Saturday and Sunday. The weather agency further forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over the Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. In men's cricket, Sri Lanka were 341 for 7 on the fifth day of the second and final test against Sri Lanka in Colombo when reports last came in. India remain in a strong position despite rain threatening to disrupt the day's play. Sri Lanka have taken 128-run lead in their second innings when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 164 points to 77,309, while the Nifty fell by 34 points to 24,173 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि हम सभी जानते हैं अभी जो है छड़ी मुबारक की यात्रा चल रही है, और ताज़ा जानकारी के अनुसार हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शिशनाग में पहुंच गई रात्रि विश्राम के लिए, जहां की शांति और पवित्रता यात्रा के अनुभव को और गहरा करती है। तो कल की और आज की अगर बात करें तो छड़ी मुबारक जो है पंचतरणी पहुंच गई है रात्रि विश्राम के लिए, जो अमरनाथ गुफा के करीब एक अहम पड़ाव है। अंत में कल यानी 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर में पहुंचेगी, जहां अंतिम पूजन का आयोजन होगा। ये पूजन इस वार्षिक यात्रा का समापन होगा और भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक चरम सीमा का प्रतीक होगा। जी हाँ, महंत दीपेंद्र गिरी जी के अनुसार इस यात्रा के दौरान छड़ी मुबारक पहलगाम तक के रास्ते में विभिन्न मंदिरों में श्रद्धांजलि देगी। ये एक पवित्र परंपरा है जो इस यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है। हर मंदिर में रुकना और पूजा करना छड़ी मुबारक के सफर को और भी पवित्र बनाता है, और ये श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अवसर होता है जो इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए हम विदा लेंगे और कुछ भजन आपके लिए चलाएंगे, और भजन कुछ भजनों के बाद ही आप जुड़ेंगे फरजाना के साथ। जुड़े रहिए इस विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल।

घर बैठे बाबा के ध्यान में लीन हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और पवित्र हलचल की। श्रोताओं, छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगवाही में अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से शुरू हुई ये यात्रा पहलगाम, चंदनवारी और शीशनाग से होते हुए अब पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। कल यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह पवित्र गुफा में मुख्य दर्शन और वैदिक रीति रिवाज के साथ विशेष पूजा की जाएगी। इसके बाद रिटर्न जर्नी के दौरान 30 अगस्त को पहलगाम में लिदर नदी के किनारे पूजा विसर्जन और साधु बोझ के साथ इस साल की यात्रा को रस्मी रूप से विराम दिया जाएगा। सच में श्रोताओं, छड़ी मुबारक को आगे बढ़ते देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इस साल अमरनाथ यात्रा 2026 की सफलता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस साल भोलेनाथ की कृपा थी और प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था की वजह से 4,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के चरणों में शीश नवाया है। हालांकि 9 अगस्त के बाद मौसम खराब होने और बारिश से ट्रैक्स डैमेज होने की वजह से आम यात्रियों के लिए यात्रा जो है उसको रोकना पड़ा था, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने दिन रात एक करके रास्ते को सुरक्षित बनाया ताकि छड़ी मुबारक की समापन पूजा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। हमारी तरफ से हमारे उन सभी जवानों, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स को सलाम करते हैं जो वहां डटे रहे। तो चलिए इसी दिव्य माहौल के बीच सुनते हैं भोलेनाथ का ये खूबसूरत भजन। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

एफ एम बाल्टल, एफ एम पहलगाम, डी टी एच और न्यूज ऑन ए आई आर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, गुफा के पास के मौसम का हाल भी आपको बता दूं। आज बाबा के दरबार में मौसम बिल्कुल साफ और सुहाना है, धूप खिली हुई है, लेकिन हाँ, ऊंचाई पर होने के कारण ठंड काफी ज्यादा है। टेम्परेचर वहां लगभग 3 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। तो जो भी लोग छड़ी मुबारक के साथ वहां मौजूद हैं, वो पूरी तरह से गर्म कपड़ों में हैं। ये सफर भक्ति, विश्वास और शक्ति की एक अनोखी दास्तान है। कल जब बाबा बर्फानी की आखिरी पूजा होगी, तो हाँ, जो सब आप सब हैं, घर बैठे ही बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पर एक और भजन सुनते हैं। आप बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधनाथ चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीन जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के कयाम के तई अहद बस्ता है। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहती साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुजाकिरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने भारत पर 146 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। वजीर आजम ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर तआवुन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहद करने का एक मिशन है। वजीर आजम ने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सयाह भी शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल तीन जिलों में बोडेक्षी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पन बिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल की कुदरती आफात से निमटने वाली कौमी अथॉरिटी ने बताया कि नेपाल तिब्बत सरहद पर लेंडे नदी के तुगलियानी में

0: रसुआ जिले के तिमूर में बोतेकुशी होता हुआ तिरुशी दरिया में ये सैलाब दाखिल हुआ। इसके बाद ये दरिया के रास्ते दीगर ज़िलों में दाखिल हो गया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज़ चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए हैं जबकि 265 लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचा लिया गया है। इनमें 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जेर इलाज हैं। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह से फ़ोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन साजो सामान और ज़रूरी दवाएँ रवाना की थीं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद पहुँचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए रابطہ कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम अज़ कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए जाते हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स शामिल हैं। इधर कुदरती आफात से निमटने की कौमी फोर्स NDRF ने आज कहा कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताहम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल के साथ सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। NDRF के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों रियासतों में NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। ये टीमें सैलाब या पानी भर जाने की सूरत में इनखला, राहत और बचाव कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज NDRF की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: पड़ोसी मुल्क नेपाल के कई ज़िलों में तबाहकुन सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ NDRF सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। बिहार हुकूमत ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक नदी से मुत्तसिल ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। भारत 18वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु ममालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर, इख्तरा, तावुन और पायदारी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर तावुन को बढ़ाने पर अपने तबादले ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार के रोज शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अकाराईकल में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रा वक्त की हद नहीं है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इक़्तिसादी मुश्किलात की जानिब इशारा किया। इस दौरान खतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात कर

0: कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 146 रन की सबकत बना ली है। श्रीलंका की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 8 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तई अहदबस्ता है। वज़ीर-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत की साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुजाकिरात की मेज़ पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: The Prime Minister expressed happiness that today sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. He said this Khelo India Samvad is not merely a program for discussing sports, but it is a platform for dialogue where every single idea can give a new direction to the nation's sports vision.
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं

0: Sensex was down 143 points to 77,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century, addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए

0: प्रेरित किया है।
1: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता

0: हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेइचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने

काल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ

की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 4,80,000 से ज़्यादा भक्तों ने सुरक्षित ढंग से दर्शन किए, जिसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने बेहतरीन इंतज़ाम किए थे। अगर हम देखें तो हर एक यात्री को RFID कार्ड दिया गया, जिससे उनकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई। पहलगाम और बालतल दोनों ही रास्तों पर ट्रैक्स को लाइट्स से जगमगाया गया, ताकि यात्री शाम और रात के समय भी सुरक्षित चल सकें। रास्ते में जगह जगह मॉडर्न मेडिकल कैंप्स लगाए गए और सभी रजिस्टर्ड यात्रियों को 10,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। पूरे रास्ते में भक्तों के लिए 24 घंटे फ्री हाइजीनिक प्योर वेजिटेरियन खाना और रहने के लिए बेहतर टेंट्स का इंतजाम था। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले सालों में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक्स को और चौड़ा और मजबूत बना रहा है, ताकि मौसम खराब होने पर भी यात्रा बंद ना करनी पड़े। गुफा तक 5G नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि पूरे रास्ते में सीमलेस वीडियो कॉलिंग और इमरजेंसी कनेक्टिविटी जो है वो मिलती रहे। फ्यूचर में एडवांस बुकिंग के जरिए मॉडर्न, इको फ्रेंडली और ऑटोमेटेड हीटिंग फैसिलिटी वाले टेंट्स बढ़ाए जाएंगे। अगले सालों में हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट्स को और पहले शुरू करने और रोड्स को एक्सपेंड करने की योजना भी है। जो यात्री है, जो आप कोई भी इंसान, जो भी शख्स है जो इस साल यात्रा नहीं कर पाया, वो अगले साल के लिए कुछ स्टेप्स जो है उनको फॉलो कर सकता है, अपना एक मास्टर प्लान बना सकता है। जैसे कि यात्रा के लिए उम्र जो है वो 13 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे इसमें अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी से रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आपके पास जो CHC यानी कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना जो है वो ज़रूरी है। यात्रा शुरू होने से करीब 2-3 महीने पहले SASB पोर्टल पर आने वाली ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स की लिस्ट से अपना हेल्थ चेकअप कराकर CHC लेना जो है वो भी ज़रूरी है। CHC मिलते ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी ट्रैवल डेट के हिसाब से परमिट जो है आप बुक करें। याद रखें, बिना रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अपने साथ आप अच्छे ट्रैकिंग शूज, वाटरप्रूफ जैकेट्स, थर्मल्स, कपड़े बदलने के लिए जिप लॉक बैग्स और एक BSNL प्रीपेड पोस्टपेड सिम कार्ड जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ पर नेटवर्क्स का जो इशू रहता है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है, तो उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपके लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप आने वाले सालों में जो है अगले साल आने का प्लान बना रहे हैं, तो इन स्टेप्स को आप जो है फॉलो कर सकते हैं और एक मास्टर प्लान अपने लिए तैयार कर सकते हैं।

जय गो माता जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ माताएं हैं, जितना भी गौवंश है, वो सब मेजर एक्सीडेंट है। यहाँ पर कोई भी गाय खड़ी नहीं हो सकती। इनको मशीनों द्वारा बारी बारी करके खड़ा किया जाता है और उन गायों को मशीनों में खड़ा करके उनकी पैरों की मालिश की जाती है ताकि वो खड़ी होने में सक्षम हो सकें और अपने पैरों पर चल सकें। यहाँ पर जितना जो

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच की आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि आप अभी से अगले साल के लिए एक जो मास्टर प्लान है वो बना सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, बनाते हैं अगले साल का मास्टर प्लान। सबसे पहले आपको दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करना होता है। जी हाँ, क्योंकि अमरनाथ गुफा के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम का प्राचीन मार्ग और दूसरा है बालतल का रास्ता। पहलगाम का जो रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा कि प्राचीन मार्ग है और इस रास्ते से आपको गुफा तक 3 से 4 दिन का सफ़र जो है वो करना पड़ता है। ये रास्ता थोड़ा लंबा है, पर इसकी चढ़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे बॉडी एडजस्ट हो जाती है। सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर से आप पहलगाम बेस कैंप पहुंचते हैं। आप जम्मू या श्रीनगर से जो है गाड़ी में पहलगाम पहुंचते हैं। रात को यही दुनवान बेस कैंप में रुकना होता है। दूसरे दिन आप पहलगाम से चंदनबारी और शीशनाग जाते हैं, जो कि 16 किलोमीटर का रास्ता रहता है। चंदनबारी तक गाड़ी जाती है, वहां से असली पैदल यात्रा जो है वो शुरू होती है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई करते हुए आप बेहद खूबसूरत शीशनाग लेक पहुंचते हैं और रात को यहीं टेंट में रुकते हैं। तीसरे दिन आप शीशनाग से पंचतरणी का सफ़र जो है वो तय करते हैं, जो कि 14 किलोमीटर का है। ये सफ़र का सबसे ऊंचा पॉइंट है, क्योंकि आप महागुनस टॉप यानी कि जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर है को पार करते हैं। इसके बाद आप पंचतरणी कैंप जो है वो पहुंचते हैं और उसके बाद चौथे दिन आप पंचतरणी से पवित्र गुफा का सफ़र तय करते हैं, जो कि 6 किलोमीटर का है, और उसी दिन आप दर्शन भी करते हैं। सुबह सुबह निकलकर आप बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद आप चाहें तो बालतल वाले रास्ते से एक दिन में ही नीचे उतर सकते हैं। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो आप बालतल जो रास्ता है उसको भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 2 दिन जो है वो लगते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास समय कम होता है, पर इसमें खड़ी चढ़ाई होती है। आपको इसमें पहले दिन आप श्रीनगर से बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। श्रीनगर से गाड़ी में आप सीधे बालतल पहुंचते हैं और रात को बेस कैंप में भोले के भजन सुनते हुए आराम करते हैं। और दूसरे दिन आप बालतल से पवित्र गुफा और वापस बालतल, जो कि 28 किलोमीटर का रास्ता है टू एंड फ्रो, आप वो तय करते हैं। सुबह के 4 बजे ही चढ़ाई शुरू करनी होती है। डोमेल होते हुए आप 14 किलोमीटर पैदल चलकर गुफा पहुंचते हैं। बाबा के दर्शन करके शाम तक वापस बालतल कैंप लौट आते हैं। इस दौरान आपका जो बजट

ब्रेकडाउन है अगर उसकी बात करें तो अमरनाथ यात्रा पर खर्चा जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप घोड़े या हेलीकॉप्टर की सर्विस ले रहे हैं, तो उस तरीके से आपका जो एस्टिमेट है वो बन जाता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन और मेडिकल की बात करें तो उसमें आपको बजट ऑप्शन में 200-300 रुपये लगते हैं और लग्जरी ऑप्शन में आपको 200-300, उसमें भी आपका उतना ही रहता है। बजट ऑप्शन में भी 200-300 और लग्जरी ऑप्शन में भी 200-300 रुपये लगते हैं। अगर आप श्रीनगर या जम्मू से बेस कैंप जो ट्रांसपोर्ट है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप शेयर्ड कैब या बस अगर लेते हैं उसमें 500-1,000 रुपये का खर्चा आता है, और अगर आप प्राइवेट कैब करते हैं तो उसमें 2,500-4,000 तक का खर्चा आपको आ जाता है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो उसमें आपका खर्चा बिल्कुल ज़ीरो रहता है क्योंकि पूरे रास्ते आपका जो लंगर है वो मुफ्त है और इसमें आपको कोई बजट ऑप्शन या लग्जरी ऑप्शन नहीं है, ये खाना सबके लिए मुफ्त होता है। और आपको बता दें कि लंगर में मिलने वाला खाना जो है वो बिल्कुल 5 स्टार जैसा स्वादिष्ट और हाइजीन से भरा होता है, इसलिए खाने का कोई खर्चा नहीं होता है। अगर टेंट एकोमोडेशन की बात करें तो बजट ऑप्शन में आपको 400-600 रुपये का खर्चा आ जाता है और लग्जरी ऑप्शन में जिसमें वीआईपी या हीट टेंट्स रहते हैं उसमें 800-1,200 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। अगर आप हेली टिकट या पोनी वगैरह करते हैं उसमें आपका खर्चा 5,000-15,000 तक के बीच में आ जाता है। आपका इमरजेंसी या शॉपिंग या प्रसाद वगैरह के लिए जो खर्चा आता है वो बजट ऑप्शन में आपको 1,500-2,000 तक आता है और आपका लग्जरी ऑप्शन में 3,000-5,000 तक का आता है। और अगर हम टोटल एस्टिमेट बजट की बात करें तो बजट ऑप्शन में आपका ये पूरा खर्चा 3,000-5,000 के बीच में हो जाता है और लग्जरी ऑप्शन में आपका 12,000-20,000 तक का खर्चा आ जाता है। तो इतना आपका ये एक जो है बजट बन जाता है इस यात्रा के लिए जिसमें जो मैंने आपकी मास्टर प्लान में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से जो है आप अपना मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं और आप अगले साल के लिए जो है ख़ुद को तैयार कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए और हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबा का बुलावा आप सबको ज़रूर आएगा।

पवित्र छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगवाही में बाबा बर्फानी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। कल यानी 26 अगस्त को दोपहर 2:15 पर छड़ी मुबारक पंचतरणी कैंप पहुंची थी। शेड्यूल के मुताबिक आज यानी कि 27 अगस्त पूरा दिन और रात छड़ी मुबारक पंचतरणी कैंप में ही विश्राम कर रही है। पंचतरणी में आज का मौसम बेहद साफ और धूप वाला है, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण हवाओं में बहुत ठंड है। वहां का टेम्परेचर जो है इस समय करीब 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पंचतरणी कैंप इस समय पूरी तरह भोलेनाथ की जयकारों से गूंज रहा है। छड़ी मुबारक के साथ आए सभी साधु संत और यात्री आज वहां आराम कर रहे हैं और कल सुबह की मुख्य चढ़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को पंचतरणी कैंप में बहुत ही भव्य और विशेष आरती की जाएगी, जहां छड़ी मुबारक के सामने सभी साधु संत और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज रात को पंचतरणी में एक बड़ा सत्संग और भजन संध्या का आयोजन होगा, जहां कल सुबह पवित्र गुफा में प्रणाम करने से पहले भोलेनाथ की आराधना की जाएगी। आज की इस पूजा के बाद कल सुबह यानी कि 28 अगस्त रक्षाबंधन को सुबह सुबह छड़ी मुबारक गुफा के लिए निकलेगी। कल सुबह पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रों के साथ मुख्य पूजन और दर्शन होंगे, जिसके साथ इस साल की यात्रा का रस्मी समापन हो जाएगा। तो श्रोताओं, आप बने रहिए हमारे संग और यहां पर कुछ भजन सुनते हैं। आप ये विशेष प्रसारण सुन पा रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पवित्र छड़ी मुबारक आज पूरा दिन और रात पंचतनी कैंप में रुकी हुई है। और आपको बता दें कि कल यानी 28 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन जो है, कल का जो सूरज है एक बेहद पावन संदेश लेकर आएगा। कल सुबह सुबह धूप निकलने से पहले ही महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाही में छड़ी मुबारक पंचतरणी से पवित्र गुफा की तरफ बढ़ेगी। कल सुबह जब छड़ी मुबारक गुफा में प्रवेश करेगी तो वहां पूरी रीति रिवाज के साथ और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ इस साल की आखिरी और मुख्य महापूजा की जाएगी। इस पूजा में देश की शांति, तरक्की और सभी भक्तों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2026 का रस्मी रूप से समापन हो जाएगा।

मैंने कहा जिसे कोई समझ ना सका उसे मेरा महादेव समझता है। मैंने दुनिया से नहीं बस भोले से

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, चमत्कारों की दास्तान है। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहाँ बर्फ़ का शिवलिंग अपने आप बन जाता है। और हाँ, अगर आपको गुफा के पास वो दो सफ़ेद कबूतर दिख जाए तो समझ लेना बाबा ने आपकी हाजिरी कबूल कर ली है। तो चलिए, इसी चमत्कार को सलाम करते हुए सुनते हैं कुछ भजन। आप बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना कि अच्छा वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है। देखते ही देखते 50 से भी ज्यादा दिनों का ये पावन सफर जो है आज अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। आज 27 अगस्त 2026 है और कल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की इस साल की यात्रा को रस्मी रूप से विराम दिया जाएगा। यात्रा कल खत्म हो रही है और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उन ट्रू हीरोज को शुक्रिया कहें जिनके बिना ये सफर नामुमकिन था। हम दिल से सलाम करते हैं हमारी इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जेके पुलिस, एनडीआरएफ और बीआरओ के उन जवानों को जिन्होंने खराब मौसम और लैंडस्लाइड्स के बीच भी दिन रात एक करके रास्ते को सुरक्षित बनाए रखा। शुक्रिया उन सभी डॉक्टर्स का, लोकल कश्मीरी भाइयों का जिन्होंने पालकी और घोड़े चलाकर यात्रियों को गुफा तक पहुंचाया, और उन सभी लंगर वालों का जिन्होंने हर भक्त को मां के हाथ जैसा खाना खिलाया। आप सभी को हमारा सल्यूट हो। श्रोताओं, आज की रात पंचतरणी में भक्ति की रात है और कल सुबह रक्षाबंधन पर जब छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी तो हम आपको सीधे वहां की लाइव अपडेट्स देंगे। और जो लोग इस साल नहीं जा पाए वो उदास ना हो, अभी से अगले साल की तैयारी जो है वो आप शुरू करें, फिटनेस पर ध्यान दें और भोले बाबा से बुलावा मांगे। हम जो है कोशिश करेंगे कि आप तक जो है हर घड़ी आप तक नई नई इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहे, और कल बिल्कुल कल 6 बजे तक जो है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कल जो है बहुत ही ख़ास दिन है, आपको बने रहना है हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। यहाँ पर आपके लिए कुछ भजन जो है प्ले करते हैं, आप बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही हमारा आज का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव यानी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कल रक्षाबंधन है, कल बाबा के इस साल के दर्शन का आखिरी दिन है, लेकिन आज मैं आपको भोलेनाथ के दरबार से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कहते हैं भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब वो माता पार्वती को अमर होने का रहस्य सुनाएं तो कोई भी तीसरा जीव उन्हें सुने, इसलिए वो सबसे छुपकर इस बर्फीली ऊंचाई पर आए। जी हाँ, जहां पर उन्होंने माता पार्वती को जो है अमर कथा सुनाई। उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी को छोड़ा, चंदनवारी में अपने माथे का चंदन उतारा, शीशनाग लेक में अपने गले का सांप उतारा और पंचतनी में, जहां छड़ी मुबारक आज रुकी हुई है, उन्होंने अपनी पांचों जटाओं से पांच नदियां बहाकर उन्हें भी खुद से अलग कर दिया। आज 27 अगस्त की इस खामोश और ठंडी रात में छड़ी मुबारक पंचतनी के कैंप्स में विश्राम कर रही है। कल सुबह जब वो गुफा में प्रवेश करेगी तो पूरे देश के लिए प्रार्थना की जाएगी, उन सभी भक्तों के लिए जो इस साल बाबा के दरबार नहीं पहुंच पाए। मैं बस इतना ही कहूंगी, उदास मत होना। अगर इस साल बाबा ने नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नाराज हैं, इसका मतलब ये है कि वो अगले साल आपको और भी धूमधाम से बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। घर बैठे ही अपनी आंखें बंद करिए और दिल से एक बार बाबा बर्फानी का ध्यान करिए। कल सुबह रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हम आपको सीधे पवित्र गुफा से मुख्य पूजा की लाइव अपडेट्स सबसे पहले देंगे।

हर एक मोड़ पर परीक्षा थी, हर एक कदम पर था इम्तिहान। पर जहां गूंज रहा था बोल बम बम बोले, वहां आसान हुआ हर मुकाम। चंदनवारी की वो ठंडी रातें, शीशनाग का वो नीला पानी, पंचतरनी में बैठ के आज याद आ रही है हर दास्तान पुरानी। गुफा के करीब खड़ी है अब पावन छड़ी मुबारक, कल सुबह बाबा के दरबार में होगी आखिरी पूजा की तैयारी। 4,80,000 से ज्यादा दिलों ने इस साल बोले का आशीर्वाद पाया। हर मुश्किल रास्ते पर चलकर बस भोलेनाथ का चमत्कार नजर आया। जी हाँ श्रोताओं, इस साल भोलेनाथ की कृपा से यात्रा बेहद कामयाब रही और 4,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो किए। कुल यात्रियों में से लगभग 1,10,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस मुश्किल चढ़ाई को पूरे जज्बे के साथ पार किया। इस साल यात्रा में एक अलग ही उत्साह देखा गया, जहां यूएसए, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे देशों से सैकड़ों विदेशी भक्तों ने आकर बाबा के चरणों में शीश नवाया। भक्तों की सुरक्षा के लिए जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक 1,00,000 से ज्यादा जाबाज, सुरक्षाकर्मी, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जेके पुलिस दिन रात तैनात थे। श्रोताओं, आज 27 अगस्त की इस पावन रात में महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाही में पवित्र छड़ी मुबारक पंचतनी कैंप में विश्राम कर रही है। आज वहां शाम को एक बेहद भव्य आरती और भजन संध्या चल रही है और कल सुबह यानी रक्षाबंधन के पावन सूरज के साथ छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी, जहां वैदिक मंत्रों के साथ इस साल की आखिरी महापूजा की जाएगी और इसके साथ ही इस साल की यात्रा को रस्मी रूप से विराम दिया जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, जो भक्त इस साल नहीं जा पाए वो बिल्कुल उदास ना हो, भोले बाबा अगले साल आपको और भी धूमधाम से बुलाएंगे। जी हाँ, और कल जो है हम आपके साथ जुड़ेंगे और कल की जो लाइव अपडेट्स है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज भी हमारा साथ आपके साथ ठीक 6 बजे तक रहेगा और कल 7 बजे हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे, सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे तक आपका हमारा साथ जो है इस विशेष प्रसारण में बना रहेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआर की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आइए अब आरती सुनते हैं।

धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा के इस पवित्र धाम में कहा जाता है और मां को जगत जननी जगत माता कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान शिव है, देवादि देव महादेव है, संपूर्ण जगत का और माता रानी पालन पोषण करते हैं। कहते हैं भागर्थाविव संप्रिक्तौ भागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव को, महादेव को जगत पिता कहा जाता है। जगत पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान संपूर्ण जगत के मालिक होकर, सरकार होकर, उनका जो स्वभाव है, बड़ा ही पवित्र है, निर्मल है, शीतल है, और उनका जो हृदय है कोमल है। वो अपने भक्तों को गले लगाते हैं और बिना भेदभाव के, बिना अहंकार के, सच्चे मन से अपने गले लगाते हैं। इसलिए भगवान शिव को जगत पिता कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और भगवान के जो शिष्य हैं, जो उनका दास है, जो उनका पुत्र है, उसका भी मन कैसा होना चाहिए, उसकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, भगवान शंकर की तरह, शिव की तरह, जैसे कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, शिव की तरह बनना है, कोमल हृदय रखना है, सच्चा मन रखना है।

जैसे हम देखते हैं भक्तों ने भगवान को पाया है, भगवान के साथ बातें की हैं, भगवान के साथ बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? सच्चा मन, सच्चा हृदय, पवित्र मन, निस्वार्थ भक्ति। भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो बाबा के दरबार में यात्राएं करें, भक्ति करें, तो अपने मन को बिल्कुल सच्चा भाव रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, क्योंकि भगवान बोले बाबा का नाम ही विश्वास है। भवानी शंकरो मध्य श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव का नाम विश्वास है, मां का नाम श्रद्धा है, भगवान की विशेष कृपा रहती है। कहते हैं मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। इसलिए बाबा महान है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि बाबा भिखारी की भी सुनता है, राजा की भी सुनता है। तो इसलिए श्रद्धा भाव से यात्राएं करें, भक्ति करें, सबको गले लगाएं, प्रेम बांटें, भगवान की विशेष कृपा रहेगी। तो इसी के साथ आज सायंकाल की आरती में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तजन दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए सुंदर भजन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ गौ

आज जब मैं इस शो से विदा ले रही हूँ तो दिल थोड़ा भारी ज़रूर है, पर होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान है। मैं आप सभी से बस एक छोटी सी चीज़ मांगती हूँ कि आप अपनी दुआओं में हम सबको याद ज़रूर रखिएगा। कल 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन दिन है। कल पवित्र गुफा में मुख्य महापूजा होगी और इस यात्रा का रस्मी समापन होगा। कल का ये ग्रैंड फिनाले शो लेकर आपके साथ जो है हमारी एक और उद्घोषिका जुड़ेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। श्रोताओं, हमारा ये पावन रिश्ता यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अगले साल वापस इस जर्नी में आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आप ये विशेष प्रसारण यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के FM बालतल से सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के आज के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स इंद्रपाल सिंह, मोहम्मद लतीफ और उनके साथ है शौकत अहमद। मैं आपकी उद्घोषिका फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मंत्र।

everybody bye-bye.

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा, उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है।
1: नृप जब राज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करियहिं जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही। वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप। साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण, कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की

0: एही अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौसल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन ही हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरुजी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। नाथ, उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते, नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुषु होई सो करो गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
0: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम, करहु सब संयम आजू जौ विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वही देव को चाली, क्योंकि तिन ही सुहायन अबध बधावा चोर ही चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर बन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवता

0: की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती, वे वहां से चल दी। ऊंचे निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
1: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
2: कत सिख दे हमई को माई, गालू करम कही करबलु पाई। राम ही छाड़ कुशल कही आजू, जेही जनेसु देई चुबराजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो? देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोक की मोर मनु छोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। रानी तुम्हें तो तोशक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
1: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावा तोरी।
2: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
1: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूँ काली, देव मांगू मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मोह पर गरहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
2: एक ही बार आज सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी दूजी। फोर जोग कपारु अभागा, भले हु कहत दुख रव रही लागा। अरे माई तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरु बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़ चूक हमारी।
1: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
2: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो,

0: की है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को जलाकर भस्म कर देता है।
1: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
0: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
1: क्या
0: उपाय की पार लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान रहु राव। लेकिन रानी मन मलीन मुह मीठ नृप, रावर सरल स्वभाव।
1: मंथरा
0: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा,
0: हाँ राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो,
0: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
0: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
0: कहा पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते, और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
0: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भई हूं दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा
0: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी, मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ। जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करबी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी अस कस कहूं माने मनूना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, पर कह देती हूं जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाए यहू फलु परिपाका। स्वामिनी मैंने जब से ये

0: मत सुना है, तब से मुझे न दिन में चैन है न रात को, न भूख लगती है न नींद ही आती है।
1: मंथरा तब
0: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं,
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी सुध आई है कि नहीं, तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंत्रा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना, भूपति राम शपथ जब करी तब मांगहू, यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली।
2: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह की

0: हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केई जम चैलीना। कहू केही रंग कही करौ नरेसु, कहू केही नृपही निकासो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूं। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पर दे रहा हूं, सुनय ने तुम मंगल साज सजा लो।
1: मांगू मांगू पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
0: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनी देहु, दुई के चार मांगी मकुलेहु। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
1: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
0: अच्छा
1: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ। हाँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
0: हाँ।
1: तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
0: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिणी जिमि हाथे समूल। अब सुझार कहीं सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत कोई राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे बरु देना, जाने हु ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसे कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संकरु साथी।

0: मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उन्हें काऊ। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिहे मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिहे दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आसीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि मोर मरन, राउर अजस नृप समझिए मन मार।
0: हा राम, हा राम, राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसीस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: जनी दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांग मात अभी देव तो ही, राम बिरह जनि मार असी मोही, राख राम कहूं जही तही भाथी।

0: 단단한 발이 차지.
1: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहू दुई की होई एक समय फुआला हसब ठठाई फुलाऊ बगाला दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं
0: तू जो चाहे कह तेरा कुछ भी दोष नहीं है मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा वही तुझसे ये सब कहला रहा है भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया मगर याद रखना ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा किसी भी तरह नहीं जाएगा अब तो इन्हीं इकलाग करूं सोई लोचनोट बैठ मुखोई मैं तेरे आगे हौथ जोड़ता हूं जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना अरिया भागनी अंत में तू पछताएगी कि जो तू ताहत के लिए गाय को मार रही है हाँ, हाँ राम, हाँ राम, भगवान करे सवेरा ही ना हो ये रात इसी तरह बनी रहे भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान आप उदित न हो अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक हैं, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुकों मुनि वरटे सुर नर करे विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहित्य।

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे